समझिएगा ना, गाया गया है कौन सी हीरोइन के लिए? शराब की बोतल के लिए गाया गया, आरफा हुंगाटा रुंगाए। कहती ये जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया है और ये एक शराब की बोतल के पीछे पीछे ये गा रहे हैं। ओके थैंक यू आरफा। प्यार अली भाटिया कहते हैं कि देखो हम ऐसा कर सकते हैं, या तो हम अपने आप को बहुत ताकतवर बना सकते हैं तो, या हम अपने आप को बहुत दुखी बना सकते हैं। बात यह है कि दोनों में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्यार अली गुड वन। और रूपल ने क्या कहा है, रूपल कहती हैं कि देखो सेलिब्रेशंस आर स्पेशल, टुडे इज माय हस्बैंड राकेश 61st हैप्पी बर्थडे, 61st बर्थडे। ओके 61 साल के शौहर हो गए हैं, सारी दुनिया को पता चल गया रूपल के शौहर की एज। एनीवे हैप्पी बर्थडे राकेश, मे यू हैव मेनी मेनी मोर, दिल से दुआ है। सॉन्ग रिक्वेस्ट फ्रॉम, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, फ्रॉम द मूवी महान। ये महान सॉन्ग के लिए

0: थोड़ी सी मुझे करनी पड़ेगी कोशिश। और समय क्या होता है कि प्रोग्राम में मैं ऐसी जज्ब हो जाती हूँ, ऐसे हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि ना ये फरमाइश है। एनी वे रूपल, आई ट्राई एंड एन्जॉय द डे। अच्छा ये क्या, कौन है? हैं मुनीर, कहते किसी ने क्या खूब कहा है, अकड़ तो सब में होती है मगर झुकता वही है जिसके रिश्तों की, जिसको रिश्तों की फिक्र होती है वही झुकता है। अच्छा ठीक है, क्या रिश्ते इतने ज़रूरी हैं कि इंसान अपनी गर्दन को झुका ले?
1: सफ़र वहीं तक जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक जहाँ तक तुम हो। वैसे तो हजारों फूल खिलते हैं गुलशन में मगर खुशबू वहीं तक जहाँ तक बेमिसाल अंदाज लिसनर्स हो। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सलमा आमद किसुमो।
0: क्या स्वीट मैसेज है, सुबह सुबह दिल खुश कर दिया, सलमा, सलमा आमद। और सलमा के बाद शबीर लंदन से आप सबको सलाम भेजा है, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अच्छा एक और आ गया है, वही सना ने भेजा है जो मुझे मुनीर ने भेजा था। यही मैं कहती हूँ ना, ये फॉरवर्ड्स जो है ना बहुत कॉमन, उनको नई कुछ यूनिक चीज़ें भेजा करें। चिराग पटेल फ्रॉम कराटीना, थैंक यू। भरत गंगाराम आपके साथ हैं, वंदनीय परवीन जी नमस्कार, भरत गंगाराम इन लंदन। और शमीम ने क्या कुछ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भेजी है, थोड़ी देर के बाद।

0: और मिल गया है हमें गाना रूपल ने जो राकेश के लिए फरमाइश की थी, इसका मतलब इनका प्यार सच्चा है बिल्कुल. अब शमीम कहती हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, द 1000 मालदीवियन रुफिया नोट इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड. रफिया है ये, रुफिया है ये, क्या है ज़रा एक्सप्लेनेशन मजीद चाहिए. अमीर अली राना, परवीन जी गुड मॉर्निंग टू यू एंड द बेमिसाल अंदाज. कहते हैं कि सब्र इतना रखो कि हर दर्द हार जाए, हौसला इतना रखो कि हर तूफान गुजर जाए. वक्त बदलने में देर ज़रूर लगती है, मगर यकीन इतना रखो कि तकदीर संवर जाए. वाह, वेरी गुड अमीर अली राना, बहुत खूब बहुत खूब. बड़ी अच्छी सलाह थी लिसनर्स के लिए. और मुकेश के गाने के साथ आपने व्हाट अ गुड स्टार्ट. एक्चुअली मैंने मुकेश के साथ नहीं, मैंने कोई और गाना रखा हुआ था, पर मशीन ने सोचा नहीं मैं मुकेश को सुनाऊंगी तो अच्छी बात है. रंजन विनोद इन लंदन, बहुत खूब. और डिज़ाइन अ लाइफ वे यू आर एक्साइटेड टू लीव द bed in the morning and feel fulfilled when you go to bed at night. A life that adds to peace, not chaos. Go by your own definition of how it should be, not by what others demand. You decide what success and joy mean for you. Kehte hain apne aap faisla karo ki mere liye safalta kya hai, mere liye kamyabi kya hai. Mil jaye to sukoon se so jao roz. रसीला, बहुत अच्छे, क्या बात है प्यार अली भाटिया.
1: रुक जाओ जाने वाली रुक जा, ये गाना फिल्म कन्हैया का है जिसको मुकेश ने गाया है, वो जिसकी धुन शंकर किशन ने बनाई है. ये गाना राज कपूर पे फिल्माया गया है, राज कपूर के साथ नूतन भी ये मूवी में थी. गाना अच्छा लगा, पुराना गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: बहुत अच्छे, थैंक यू. और अब देखते हैं कि रमेश हरिया ने भी मैसेज भेजा है. कहते हैं कि आज नैरोबी में मौसम बड़ा सुहाना है और आपने प्रोग्राम की शुरुआत दारू की बोतल से कर दी है. मैंने कहा था ना ये मशीन ने शुरुआत की है, मेरा इरादा नहीं था गाने से की है. सब लोग बिन पिए झूम उठेंगे, क्या बात है रमेश हरिया. ये गाना राज कपूर की फिल्म लड़की हुई बोतल के लिए गा रहे हैं. जी जी बिल्कुल. और भी हो सकता है कि मैं कोई गाना सुना दूं आपको इसी के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है. लखबीर किसी के दिल, अच्छा ये ऐसे लखबीर आपके जो मैसेजेस होते हैं ना, ये ज़रा ना किसी के दिल में, अच्छा कोई बात नहीं, ये बात लिख कर भेजें, ठीक है. अच्छा एम एल विश्वकर्मा, देर मैनी येस्टरडेज, दे विल बी मैनी टुमारोज, बट टुडे इज द ओनली वन, सो एंजॉय टुडे. अच्छा ठीक है, ये सभी कहते हैं पता क्या, आज एंजॉय कर लो, कल का किसको पता. ये कितनी सदियों से लोग एक दूसरे को कह रहे हैं. और कहती हैं मंजू डगर, मैं अंधेरों से बचता आया था अपने आप को, मगर कहते हैं कि मैं अंधेरों से बचा लाया था अपने आप को, मगर मेरे पीछे उजाले पड़ गए. क्या बात है, कहते हैं कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए, ये खुदा ने भेजे थे आपके लिए उजाले. मंजू डगर और मंजुला विश्वकर्मा,
2: सबको नमस्कार. परवीन जी, और जो अभी आपने गाना लगाया रुक जाओ जाने वाली, वो राज कपूर और नूतन थे उस फिल्म में, और ये गाना भी राज कपूर पर फिल्माया है ऐसा मुझे लगता है.
0: अच्छा राज कपूर पर था, किसी ने कहा जॉनी वॉकर. अच्छा हो सकता है, मैं श्योर हूँ वन ऑफ यू इज करेक्ट, राइट. सोनल मोदा आप भी सुन रही हैं, ठीक है. अब चलते हैं शोभना और दिनेश के पास. कीपिंग इन टच विद सच एंग्रोसिंग प्रोग्राम, every word is a treasure, कहते एक एक लफ्ज इस प्रोग्राम का खजाना है. सो इसलिए आप सुन रहे हैं, अब शराब पर खजाना खुलने वाला. सो मच इंफॉर्मेशन शेयर्ड एंड आउटस्टैंडिंग सॉन्ग. शोभना और दिनेश मैं आपको ये भी दे ही दूँ, क्योंकि आपने तारीफ की है तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि कल क्या हुआ है वाघा बॉर्डर पर. आप तो जानते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये सीमा है, एक तरफ एक भाई है दूसरी तरफ दूसरा है. अब रोजाना एक रस्म होती है वहां पर और लोग दोनों अतराफ से आते हैं. तो समीन एक पाकिस्तान का फैन आता है 20 किलोमीटर दूरी पर रहता है लाहौर में शायद, तो वहां से आता है और कितने लोगों से मिल कर जीरोस, मेरे ख्याल जीरोस पॉइंट पर पहुंचता है. वागा बॉर्डर पर है ये पॉइंट, यानी आपको खास इजाजत लेनी पड़ती है, आप नहीं जा सकते जीरो पॉइंट तक. खैर वागा बॉर्डर पर क्यों आया है ये, क्योंकि वहां आए हुए थे एआर रहमान और इम्तियाज अली, भारत के मायानाज फिल्म साज और मौसीकार आए हुए थे. और ये फैन पाकिस्तान का कैसे मिलेगा, जाना तो मुश्किल हो जाता है ना पाकिस्तान से भारत, तो बॉर्डर पर ही उनको पकड़ लिया. इतने लोग थे वहां, तो वहां पहुंचकर ऊंची ऊंची आवाज में इम्तियाज अली इम्तियाज अली, वो बेचारा डर गया. समझ, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं ये जो इम्तियाज अली हैं बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं फिल्म साज हैं, तो समझ वो बेचारे डर के उन्होंने देखा. तो इसने कहा कि आपसे एक बात करना चाहता हूँ, 20 मिनट की बात हो गई. कहती है इतनी मुझे खुशी हुई भारत के स्टार्स को मिलकर, ये पाकिस्तानी कहती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इम्तियाज अली कुछ कह नहीं रहे थे, बड़े डरे हुए थे. थैंक यू सो मच, बस यही करते गए और तो कुछ नहीं कहा. मगर इजाज़त लेकर ये पाकिस्तानी फैन वहाँ पहुँचा है और कह रहा था मुझे सरहदें अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसी नहीं कि लोगों को तकसीम कर दें, ऐसी खुली सरहदें होनी चाहिए जहाँ आप एक दूसरे के जाकर मर्जी से बात करें. देखा समझ कितना पाकिस्तान और भारत के लोगों में कितना उंस है, कितना वो चाहते हैं, दे यर्निंग कि हम एक दूसरे के मुल्क में जा सके. पर देखें कैसे दूरियां पैदा हो गई हैं. ये एक प्रमोशन हो रही थी फिल्म की जो इम्तियाज अली और ए आर रहमान बॉर्डर पर कर रहे थे. मैं और फिल्म का नाम है मैं वापस आऊँगा. अच्छा था कि बॉर्डर पर करे कि उन्होंने प्रमोशन.
3: दिस इज ईस्ट एफएम केन्याज प्रीमियर एशियन मिक्स.
4: इट्स 10:24.
5: Priority Banking from Standard Chartered not only manages your wealth and legacy, Priority Banking from Standard Chartered connects you to investment opportunities across the world. Real global expertise and a wide range of investment solutions right here in Kenya. Now's your time for wealth. Join Priority Banking today and enjoy real returns and real peace of mind. Visit your nearest branch or speak to your relationship manager.
6: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
7: The Joshis proudly presents Once More Ni Virasat, an unforgettable evening of Gujarati Lok Geet, poetry and timeless melodies featuring renowned poet Ankit Trivedi, folk music maestro Dhruvish Shah and melody queen Anil Vasabda. Saturday 20th June from 6 p.m. at Jalaram Auditorium, Nairobi. Tickets from 2,500 shillings. Call 0722-417-153.
3: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
4: East FM.
3: East FM. East FM.
4: East FM.

0: अपने बर्थडे के दिन राकेश रूपल के लिए ये गाना गा रहे थे, हैप्पी बर्थडे। और अब चलते हैं, शमीम कहती है ये जो रुफिया है, रफिया रुफिया ही होगा, ये करेंसी नोट है, ओ आई सी, मालदीव्स का, कहते हैं बहुत ही खूबसूरत है, मज़ा आ जाए कमाने में भी। ओके, अब रेखा, रेखा शाह, योर एटीट्यूड एंड टैलेंट शुड बी लाइक अ स्पाइडर्स वेब, इट मे नॉट होल्ड द होल वर्ल्ड बट इट्स इनफ टू होल्ड योर ओन किंगडम। स्पाइडर एक वेब में। अच्छा, अब देखते हैं कि रसीला कहते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान डिलीवर्ड हिज फर्स्ट एवर लाइव परफॉर्मेंस एट द वाघा बॉर्डर। बहुत अच्छे रसीला, देखा आपने फॉलो अप करके इंफॉर्मेशन दी है। June 7th का दिन था। कहते हैं कि द हिस्टोरिक कॉन्सर्ट टाइटल जय हो अ म्यूजिकल सल्यूट टू द ब्रेव हार्ट्स वॉज अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर BSF को वो उन्होंने एंटरटेन किया एंड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हेल्ड राइट बिफोर द डेली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। He performed alongside singer Mohammed Chauhan. ये Mohammed Chauhan के बारे में कुछ मैंने सुना है कि बहुत शायद मोहम्मद रफ़ी की तरह गाते हैं, खैर I'm not so sure। और प्यार अली भाटिया क्या कहना चाहते हैं?
1: ये चीज़र देखो तेरी तस्वीर, ये गाना फिल्म महान का है, 1983 की मूवी है, जिसको किशोर कुमार ने गाया है और जिसकी धुन आर.डी. बर्मन ने बनाई है। ये गाना अमिताभ बच्चन पे फिल्माया गया है और ये गाना, ये इसके साथ वहीदा रहमान भी थी। ये गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
0: और रमेश हरिया हैं यहाँ पर, कहते हैं कि जी गाना राज कपूर की फिल्म का था, जॉनी वॉकर पे नहीं फिल्माया गया था। ओह थैंक यू। और कहते राकेश जी का जन्मदिन शुभकामनाएं। आज हमारी डायरी में एक नया नाम आ गया है, इजाफा हो गया है, और आप हैं रूपल बैन, रूपल हैं। अच्छा रूपल, चलिए रूपल तो बड़ी खुश हैं, कह रही हैं कि बड़ा अच्छा लगा ये गाना, पहली बार और द ओनली टाइम मैंने सुनाया है। और अभी जो कहते हैं कि पता है कि आपने ना झूम उठे हैं लिसनर्स, तो चलिए एक और गाना झूमिएगा इस पर।

0: Education is Timothy Mioko says the school safety standards manual does not address the matter despite it being a real challenge, and urges the plant stakeholder task force to include it in its deliberations.
1: Our safety manual is very silent on lesbianism and gayism. Why? Because we want to bury our heads in the sand and we want to blame them on Western culture. These issues are with us, and not addressing these issues is not one of the solutions that we have.
0: And as efforts continue to address the perennial problem of school unrest, education expert Mutho Mioko says the government should take time to rethink the boarding school system. While welcoming the formation of a task force to engage stakeholders and collect views, she proposed introducing day school wings in existing boarding schools and embracing technology as part of the solution. That's the news update on East FM.
2: East FM News. All the favorite songs you grew up listening to. And the premiere mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: Samin, abhi maine kaha hundreds. Krishan Saroy kehte hain ki sankro is hundreds. मुझे इतना पता है कि सैकड़ों इज मैनी सेवरल, उसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, लेकिन अभी मुझे कहा गया है कि सैकड़ा इज हंड्रेड. सो प्लीज़ फाइंड आउट अपनी डिक्शनरी में कि सैकड़ों का मतलब है क्या एक्चुअल. ओके, रफिया खान, आपने कहा है कि इट मीन्स बेशुमार. नाउ दैट इज countless people came, so many hai na, lekin maine hundreds kaha hai Rafia. So try and look for the meaning of sankro in your Urdu dictionary if you can. Theek hai.
4: Hello Pranin ji, Miss Danjadir. Pranin ji, aapka jawab hai 100 se zyada log. Thank you very much, take care, good day.
3: नहीं, हंड्रेड्स का 100 से ज़्यादा तो हो सकता है, 200, 300, 400, 500, 600. सो सिर्फ कह देना ज़्यादा, फिर तो एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं ना. सो हमें चाहिए कोई स्पेसिफिक नंबर इसका.
5: प्रवीण जी, अगर आपने 100 लोग बोला ना, तो सैकड़ों लोग ही होते हैं कि सैकड़ों लोग युद्ध में मारे गए. ऋतु गुप्ता.
3: नहीं, मैंने 100 नहीं कहा, मैंने हंड्रेड्स कहा है. अब मंजुला विश्वकर्मा से जाने.
6: प्रवीण जी, कई 100 बोल सकते हैं या सैकड़ों बोल सकते हैं, सैकड़ों करेक्ट है.
3: अच्छा, सैकड़ों का मतलब मुझे तो इतना पता है कि इट मीन्स मैनी. इट मे नॉट बी हंड्रेड्स, इट कैन बी टेन्स, इट कैन बी हंड्रेड्स, इट कैन बी थाउजेंड्स. सो मंजुला विश्वकर्मा, सैकड़ा पहले देखें क्या मतलब है. सैकड़ों लोग, सोनल मोदा ने भी कहा है, चिराग पटेल, साधा का क्या मतलब है आई डोंट नो, शब्बीर अहमद, बहुत खूबसूरत साहब है, लता जी का गाना, ओके, अच्छा लगा आपको, रसीला, 100 तो होता अगर आई सेड अ हंड्रेड. I didn't say 100. I said hundreds of people. S लगा दें, please, 100 के साथ.

0: फिल्म थी ससुराल सर सैकड़ों का पता नहीं चल रहा अभी तक किसी ने मुझे एग्जैक्ट मीनिंग दिया नहीं है खैर सुनते हैं यहाँ
1: जी आपके सवाल का जवाब ऐसे भी कर सकते हैं अपुन को क्या वो टोपी पहना के चला गया भाई या पैसा कर सकते हैं मैं ये पतली गली भी अपने को चूना लगा दिया रे तो आम भाषा में हम ऐसे ही कहते हैं शुक्रिया अरुण जी
0: हाँ मुझे चूना लगा गया ये बड़ा अच्छा था टोपी पहना गया बहुत अच्छे और रमेश कई सारे से होता है सैकड़ों का मतलब कई सारे या कई इट डजंट मीन हंड्रेड्स कई सारे होता है हंड्रेड्स मीन्स मैनी हंड्रेड वैसे सीधों का मतलब कई सारे हाँ मैनी सैकड़ों मीन्स मैनी इट हैज़ नथिंग टू डू विद हंड्रेड्स ओके जैसे कि रमेश हरिया ने कहा है सोनल मोदा सैकड़ों ट्रांसलेट्स इनटू इंग्लिश एज हंड्रेड्स डज इट अच्छा वो ये डिक्शनरी का है आपने डिक्शनरी में देखा है सही डिक्शनरी
2: परवीन जी हंड्रेड को सैकड़ा बोलते हैं और हंड्रेड्स को सैकड़ों बोलते हैं मतलब कई सौ हंड्रेड्स सैकड़ों
0: ओ फल्ला सो इट मींस कृष्ण सरोय इज राइट सैकड़ा इज हंड्रेड और सैकड़ों हंड्रेड्स दैट मींस के हमारे हमारे भाषा में हंड्रेड्स की ट्रांसलेशन है थैंक यू मंजुला विश्वकर्मा शैतान बन गया हूँ ओके अमीर अली राणा दिनेश सैकड़ों इज अनअकाउंटेबल लाइक अ बिग क्राउड गैदरिंग लविंग योर शो एज ऑलवेज दिनेश पोपट इन सिडकप लंदन बहुत अच्छे लाइक यू सैड Not uncountable, yeah. Okay. Then Mrs. Dhanjal.
3: Hello, Praveen ji. Ye sankde, sankdo, sau aur shat. Iska matlab hai 100. According to me. Thank you very much. Take care.
0: अच्छा सैकड़ा 100 है अगर तो ये है तो फिर सैकड़ों ही करेक्ट होगा
4: प्रवीण जी जी मैं लास्ट आंसर दे रही हूँ बाकी आप बताना मैंने तो फाइंड आउट किया है सैकड़ों का मीनिंग होता है कई सौ लोग युद्ध में मारे गए ऐसे हम बोलते हैं
0: बिल्कुल सही आई विल हैव टू एडमिट कि सैकड़ों मुझे लगता था कि सैकड़ों मींस मेनी पर उसकी लिमिट क्या है आई डिडंट नो सैकड़ा वो कह रहे हैं कि 100 होता है टीना द हिंदी वर्ड फॉर सैकड़ों Translates to hundreds in English. It is the plural form of saw, 100, and is used to refer to a large unspecific quantity composed of multiple hundreds of people. So, sankro is correct. Thank you, Tina, for finding out for us. Bahut achhe, I'm so grateful. Pata chal gaya aaj.
5: Hello, main Apreen ji. डिक्शनरी जी लिखा है कि सौवा भाग होंदा सौवा कहंदे सौवा थैंक यू जी
0: रसिला थैंक यू प्रवीण जी सुपर थिंकिंग यू मेड अस थिंक मैं खुद अपने आप से कर रही थी आई वाज थिंकिंग कि सैकड़ा कैसे हो सकता है 100 है ना सैकड़ा 100 था वो कहा था कृष्ण सरोय ने जी कृष्ण
6: जैसे मैंने बताया था सैकड़े का मतलब सिंगुलर होता है और सैकड़े का मतलब होता है प्लूरल भी
0: पर मैं तो हैरान हूँ मैंने कभी ऐसे 900 तक
6: हजार आ जाता है फिर हजारों का और हजार की बात होती है फिर लाखों की और लाख की बात होती है
0: ओके
6: ऐसा ही प्लूरल है ये
0: सैकड़ों ओके जैसे कि कृष्ण सरोय ने कहा है कि फ्रॉम 1 to 900 आप सैकड़ा कह सकते हैं पर मुझे एक चीज बताएं थोड़ी देर में मैं आपसे पूछती हूँ पहले एक आवाज सुना दूं आपको
7: शिवाजी साहब शबीर अगेन ये जो यू नो ये आप कह रहे हैं सॉस हंड्रेड्स यू नो क्रिकेट में एक अब सेइंग है सैकड़ा इसने सैकड़ा किया सैकड़ा मतलब के इसने सौ किया ये एक फ्रेज है
0: ला मुझे पता ही नहीं था कि सैकड़ा मींस 100 ओके पर अब क्योंकि मुझे समन मुझे न्यूज़ में ये इस्तेमाल करना पड़ता है हंड्रेड्स तो मैंने देखा कि आम तौर पे लोग दर्जनों कह देते हैं दर्जनों लोग थे पर फिर तो वो 100 से ज़्यादा तो कई दर्जनें हो गई बहुत ज़्यादा हो गई इसका मतलब सैकड़ों फॉर द हंड्रेड्स इज वेरी गुड एक्सप्रेशन अच्छी एक्सप्रेशन एक और शायद
3: विन जी आपकी ये सैकड़ों की बात पे मुझे एक बात याद आई जो हम स्कूल में सीखा करते थे जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे हिंदी में क्या बोलते थे काई ढाई सैकड़ा हजार दह हजार लाख मीन्स इकाई मीन्स एक ढाई मीन्स दस सैकड़ो मीन्स 100 थैंक यू वेरी मच टेक केयर
0: बहुत अच्छे सामने आज तो वाकई हमारे इल्म में इतना इजाफा हो गया एक एक्सप्रेशन से आई एम सो हैप्पी वी लर्न्ड सो मच अच्छा एक ये आंकड़ा दांकड़ा जो आप कह रही थी मैंने सुना हुआ है किसी से न जाने किस से और 100 गुना 400 गुना 700 गुना रमेश हरिया ने कहा है हंड्रेड सौ गुना लेकिन जो दर्जनों मैंने कहा है ना कि दर्जनों लोग मारे गए वो भी अगर 100-200 के दरमियान हो तो हम यूज़ कर सकते हैं जिसे हम काउंट ना कर सकते हैं उसको सैकड़ों कहते हैं ओके चलिए ठीक है ये भी बात हो गई
4: प्रवीण जी ये मैथमेटिक में आता है काई दाई सैकड़ा हजार सैकड़ा मतलब सिंगलर है और सैकड़ों मतलब प्लूर है ऋतु गुप्ता
0: और मैं कृष्ण सरोवर को कह रही थी नो लेकिन वो राइट थे

0: और कृष्ण सरोय ने कहा है सदी फॉर क्रिकेट इज इनकरेक्ट. आप क्रिकेट के मैदान पे सदी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, इट्स रॉन्ग. कहते हैं इट हैज टू बी सैकड़ा, क्योंकि सदी इज टाइम लिमिटेड. वक्त है सदी, इतने साल, 100 साल का वक्त सदी है, बट नॉट ऑन द फील्ड. ऑन द क्रिकेट फील्ड इट इज शतक और सैकड़ा.
1: शहजादी साहिब, शबीर अगेन, यू नो, ये सदी तो एक क्रिकेट में ये फ्रेज आज तक नहीं, इतने 50 साल खेला है, 60 साल खेला मैंने क्रिकेट, कभी भी ऐसा फ्रेज नहीं सुना. हाँ, सैकड़ा, इसने सैकड़ा किया, इसने 2 सैकड़े किए, वो भी उर्दू में है, पंजाबी में भी है, उर्दू में, बेसिकली इट्स द सेम थिंग. थैंक यू.
0: अच्छा, आई एम अमेज्ड. कई बार ऐसा हुआ है कि ऑफ एयर मुझे कृष्ण सरोय कुछ कहते हैं, ऑन एयर शबीर अहमद कुछ कहते हैं, और वही होता है. दोनों लंदन में हैं और दोनों की थिंकिंग सेम होती है और आंसर करेक्ट होता है. दोनों ने बिल्कुल वही कहा है कि सदी कैन नॉट बी यूज्ड ऑन द क्रिकेट फील्ड. ये बिल्कुल क्रिकेट में टर्म्स में है ही नहीं. हंड्रेड्स मीन्स सैकड़ा, हंड्रेड्स मीन्स सैकड़ों, सैकड़ों, लाखों, ये तो है. और प्रोफेसर ऊपर

0: कि मिसेस धंजल ने कुछ कहना है।
1: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग मिस धंजल। प्रवीण जी, आज आपका टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, दिल करता है कि जवाब देते जाएं, जवाब सुनते जाएं। प्रवीण जी, अभी आपने जो गाना लगाया सदियों पुरानी, ये सैकड़े नहीं है, ये सेंचुरी है, सेंचुरी में शताब्दी। ओके, सो इसको सदी को हम सैकड़े नहीं कह सकते, ये हजारों में हो सकती है। ओके, जिसको हम हिंदी में शताब्दी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे सेंचुरी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव ए गुड डे एंड नाइस प्रोग्राम, लव यू।
0: पता है क्यों मिसेस धंजल? इसलिए कि मैं खुद कंफ्यूज्ड थी, सो मेरी कंफ्यूजन को लेकर आपने दिलचस्प बना दिया है प्रोग्राम, क्योंकि हंड्रेड्स का हमेशा मैं कहती थी कि व्हाट इज़ द टर्म, और फिर ये जो सेंचुरी थी मैं कहती थी कि उर्दू में क्या हो सकता है, तो सैकड़ा ही था, करेक्ट था, और सब ने आंसर दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो अभी अभी सदियों पुरानी हम अपनी कहानी मंजुला गोरसिया ने टेलीफोन किया है, कहती हमारी और आपकी भी सदियों पुरानी कहानी है। क्या बात है, बहुत अच्छे, आई एम सो हैप्पी। मंजुला विश्वकर्मा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बड़ी चाहने वाली।
2: शहजादी साहिबा शब्बीर अगेन, ये मंजुला दीदी ने जो आपके लिए ये शब्द यूज किए ना, इतने प्यारे प्यारे शब्द यूज किए ना, यू नो शी इज प्रेजिंग यू, यू नो ऑल द टाइम, यू नो हम लोग, आप कितने लकी हो, यू आर सो लकी दैट के जो भी है ना, जो भी आपको प्रेज करता है, माशाल्लाह यू आर सो वेरी लकी। यू नो ऑब्वियसली जो भी हो रहा है प्रोग्राम में, तो हम बहुत सीखते हैं आपसे, यू नो लोगों से भी सीखते हैं। So you are blessed, my dear. Bye.
0: Thank you, Shabir. बात ये है कि पहले पहले मैं ऐसी, मतलब कि अगर कोई तारीफ की कॉल आती थी तो मैं उसे काट कर डिलीट कर देती थी, कुछ नहीं कहती थी, मैं कहती थी कि नो दिस इज नॉट राइट। फिर मुझे लिसनर्स ने जो झाड़ पिलाई है कि वी आर टेकिंग द टाइम, We are writing messages, you are just ignoring them. ये गलत है, आप जैसे भी फील करें हमारी इनपुट शुड गो ऑन एयर, सो दैट इज व्हाई आई एम सो हैप्पी एंड इट डिलाइट्स मी।
3: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स। वी अनलॉक्ड गवा फॉर यू, नाउ वी आर गिविंग यू अ फ्रंट रो सीट इनसाइड गवर्नमेंट, इनसाइड द कैबिनेट, इनसाइड द डिसीजन मेकिंग कमिटीज, इनसाइड व्हाट्स अबाउट टू हैपन एंड व्हेन इट'ल हैपन, इनसाइड द बिग अपॉर्चुनिटीज, इनसाइड द टेंडर्स, इनसाइड गवर्नमेंट जॉब्स। Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
4: आत्मा की ये आवाज है।

0: और अमीर अली राणा, आपको आज का बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा प्रोग्राम. आई एम ग्लैड एवरीबडी लर्न समथिंग और अदर. अपनी गलतियां भी हमने तलाश कर ली, थैंक्स टू कृष्ण सरोय. और समिन, आगे एक छोटी सी ब्रेक है और मोहम्मद नॉट मोहम्मद रफ़ी, मेहदी हसन की ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है, आप इंजॉय कीजिए.
1: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
2: Lights, glamour, beauty and creativity. Kenya Brahm Sabha presents Bridal and Groom Hair and Makeup Competition Season 2 on Saturday 13th June 2026 from 6:30 p.m. at the Kenya Brahm Sabha Hall, Third Parklands. Enjoy stunning makeovers, live entertainment, dinner, DJ party, raffle draw and games. Tickets, Kenya shillings, 1,000. Register now, 0721-974-444.
3: East FM. Asian Mix.

0: और क्या चाहिए, समझ मेहदी हसन की आवाज हो और इतना ब्यूटीफुल कलाम हो, और क्या चाहिए।
1: प्रवीण जी, अगर ये खबरों की बात है तो सिंपली भाषा में आप ऐसा कह सकते हैं कि अनगिनत लोग मारे गए, हजारों की तादाद में लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, एक रफली एस्टिमेट के हिसाब से ये चलता जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी।
0: यहाँ सैकड़ों लोग जिंदा रहे। और जी हाँ, आपने कहा है कि व्हाट वाज द आंसर राफिया खान, सैकड़ा था, द वन दैट वी यूज इन अ स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, सैकड़ा था, नॉट सदी। समझ इसी के साथ मैं चलती हूँ आगे, नीलूफर उनके साथ रहिएगा पूरे तीन घंटे का प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: चाशनी प्लेइंग फॉर ईस्ट एफएम केनियस प्रमेशन मिक्स. दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल. एंड आज का भारी सवाल जो आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इट्स वेरी सिंपल एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑन दिस. सो क्वेश्चन अगेन, वुड यू गिव अप योर स्मार्टफोन फॉर अ मंथ? सो स्मार्टफोन्स हैव बिकम आवर अलार्म क्लॉक्स, कैमरास, वॉलेट्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स एंड इवन आवर सोशल लाइव्स. बट इफ समवन ऑफर्ड यू अ रिवॉर्ड or challenged you to go 30 days without your smartphone, would you do it? So right now, this is the question that I am asking. Would life get better or worse or simply impossible without smartphones? Share your thoughts with me on 0701-106-106.
1: Your favorite stars.
2: This is Aamir Khan.
3: This is Akshay Kumar.
4: This is Adi Vaslam.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
1: Love East FM.
6: You're listening to East FM.
7: You're listening to East FM.
8: You're listening to East FM.
9: East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: That's playing for News to FM, Kenya's premier Asian mix. This is the City Lights with Vishal. And imagine waking up tomorrow and your smartphone is gone. Not broken, not lost. Just off limits for the next 30 days. Most of us check our phones before we even get out of bed. Messages, news, social media, weather, emails. It all happens before breakfast. Studies suggest that many people spend several hours a day on their phones. That's hundreds of hours every year spent scrolling, tapping, and swiping. So what would happen if all that time suddenly became available? Would you discover a new hobby? Or spend the whole month trying to remember phone numbers you never bothered to save in your head? Back in the day, hum hamesha numbers yaad rakhte the. My father, actually, he always made sure that the emergency numbers we remember. Especially agar jab hum school mein the, jahan pe you make sure you know your family members' numbers, your agar koi aapka next of kin to chalo family members yaage, but your फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स जो है, हमारे रिलेटिव्स जो हैं, उनके नंबर्स. तो मेरे को एक्चुअली इंडिया के नंबर्स भी याद थे एंड केनिया के भी. बट फॉर नाउ इट सीम्स लाइक ऑब्वियसली द नंबर्स हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स, बट आई फील दैट यू नो व्हाट, राइट नाउ अगर कोई मेरे को बोल के भाई साहब ये नंबर क्या है, को मेरा नंबर आपको ऑफेड याद है कि नहीं, एंड आई वुड बी सेकेंड गेसिंग माई सेल्फ एवरी टाइम. बट नॉट शोइंग ऑफ, मेरे को एटलीस्ट पांच नहीं, लेट मी काउंट, हाँ नौ नंबर ऑफ हेड याद है, हु आर ओब्वियसली फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, फ्यू रिलेटिव्स, इंडिया के नंबर, वो भी प्लस 91 वाले जो शुरू होते हैं. सो आई रिमेंबर दैट. सो डू यू रिमेंबर दोज नंबर्स? कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद रहते हैं ऑफ हेड. एंड वॉट इज़ योर टेक ऑन दिस कि अगर फॉर द नेक्स्ट वन मंथ 30 डेज आपका अगर फ़ोन लिया जाए एंड यू समवन टेल्स यू, यू नो व्हाट, इट्स अ चैलेंज, डोंट यूज़ योर फोन फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, व्हाट वुड यू डू और हाउ वुड यू रिस्पोंड? शेयर योर थॉट्स विद मी ऑन 0701 106 106.
1: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स.